0: ना समुड़ा मगिरा तो रवो वाया
1: कपट ला कोड़ी पर रखो कपट ला छोसु पर रखो।